सितम, तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंभे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, पट्टा खे की लड़ी है, आंखों में गुस्सा है।

अंधेरी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी से।

0: जंगल है, आधी रात है।
1: इतना क्यों याद आ रही हो? What do you expect? ट्रेन से कूद कर लौटा हूं?

0: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली,
1: बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
0: अरे नहीं,

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ 100 लिए हैं.

0: चाहते क्या?
1: जीना तो चाहता हूँ लेकिन प्यार में।
0: तो फिर मरना चाहते होगे?
1: हाँ लेकिन वो भी प्यार में।
0: अच्छा।

तेरी बेटी क्या चाहती है और तू उसे क्या दे रहा है। तू बाप है या मेरा व्यापारी है? ये तेरी बेटी है बेईमान, ये नोटों की कोई गड्डी नहीं है जिसे तू सुधीर भाई के काले धंधों में लगाने की सोच रहा है। क्या बेटी के सुख की कोई अहमियत नहीं? जरा देख, ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ये फूल से बच्चे जो सुधीर भाई को ललकार सकते हैं, एक तू है जो अपनी जान बचाए खड़ा है।

कसम, तोड़ेंगे इसका गुरूर हम। खंबे जैसी खड़ी है लड़की है या छड़ी है, शोला है फुलझड़ी है, पटाखे की लड़ी है, आंखों में गुस्सा है।

उसने कहा चाहता है क्या, मैंने कहा चाहत तेरी, मैंने कहा समझा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी।

0: बापरे,
1: इस तरह जल्दबाजी करोगी ना तो तुम्हारी एक न एक हड्डी जरूर टूट जाएगी।
0: टूटती है तो टूटने दो, तुम डॉक्टर किस काम के हो? वो बांधो ना वो सफेद सफेद, वो क्या होता है?
1: सफेद सफेद, अच्छा अच्छा प्लास्टर,
0: बिलास्टर, हाँ हाँ
1: ब्लास्टर नहीं प्लास्टर,
0: पिलास्टर,
1: पी नहीं प्ला, खैर छोड़ जाने दो। देखो अगर तुम्हें सचमुच स्केटिंग सीखनी है ना तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो पूरा वजन आगे के पहियों पे रखना चाहिए, यूं समझे? तुम क्या करती हो, पीछे के पहियों पर वजन रखती हो और इसलिए तो
0: डॉक्टर साहब अगर आपको सचमुच स्केटिंग सीखना है तो एक बात जरूर याद रखिए, अपना वजन पिछले पहियों पर नहीं अगले पहियों पर रखना चाहिए। ऐसे।
2: अरे